ठगोरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया को नानक सर्व

ए जानो भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुगहारियो मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नामा। मान रे कौन कुमा तैलीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन हाजले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहाओ दारा मीत पूसन बंदी फगरे तन स्यों लागे जल ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इन स्यो न्यू लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जस ताको बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर परपंच उधर निज पोखयो पसकी न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरत आओ सिरानी हो नान घर बिरद पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह संचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग।

सहज पियाई। दुबदा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पौन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग, कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्र रामंग, मान मुख जूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग, जिन क्या कह से साध जानन, ज्यो गूंगे मिठे आई, अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई। गुरदाता मिले तामत होवे, निगुरे मत ना काई, ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम भुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुंग चला मनहारा। सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यान, नाम मन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खान। सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल सा जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो तुत्या गई विखाए, सगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए। नानक गुर सरनाई उबरे सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सब दरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनिया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागणना।

की अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बलोमन को माटा। ताकी हो बलोमन हारी क्यों मेटे गो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा जग जीवन।

अनमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मिले राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पास कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे हुए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया तुमने पया पिखारी अशतराज बिशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कड़क जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कड़ भुग सोई कहे रविदास हाथ पहने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तउ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी आभे कासु कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाब जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब वेके अराज इंदर समसर गृह आसन बेन हर भगत कहो के लेख ना बिचारो राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं तयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया कै रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके चार पदार्थ अचतसा सिद्ध नवृद करतल ताके हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाध उपात रहित फुन बड़े भाग लिव लागी कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी गारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई,

की सेवा सो करे जाको नदर करे तुझ बाज प्यारे केवरहा सावड़े आई देह जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी सावे अपना अवर न जाचो कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाई है पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चितन किया कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना, जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हां मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरिया चंगा क्यों होए। हिकमत हुकम न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे। गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए। रहाओ सच सिमरिया होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास। गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे। साहिब पावे सो प्रवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार। ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो शब्द गए सार। तना श्री मोहल्ला पहला जियो तब है बारो बार तब तब खावे बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए यो पक्का रोगी बिल लाए। बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए। रहाओ जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कारख दा गादा दाग दोष मुझ चलिया।

आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे करते सुख पावे, बिन सतगुरु सब मोई बिरलाए, अन दिन दाजे सांत ना पाए, सतगुरु मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सांत सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिने प्रद पाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर के नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास

सात सह सुख बाणी सेवा साची नाम समाणी शब्द मेरे प्रीतम सदा त्याय साच नाम वडियाई पाए आपे करता जुग जुग सोए।

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए सुई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीख पेखारी तेरे तू निज पत हैं दा।